सफल होए मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाए सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए।

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया है सारे हिंदुस्तान दे विच कोई राग नहीं गाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कविता नहीं गाएगा, सास संगत तेरी कोई सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं, एक प्यास

लॉन्च आने के हैं लगता मित्रा, आज तेरे चेहरे को लगता तू बड़ा खुश, ऐसे लगता जिवे तेनु कुछ मिले। कवि कहने लगा हाँ सुजान चंद्र।

फिर कहना है महाराज मेरे मन में चैन है तो संत को फिर कहते हैं तेनों आख्या भज जा

प्यासा पर हाली भी दौड़ता जा रहा है, क्यों? जो मेरे गुरु ने किया है सुजान चंद दौड़ जा, ये दौड़ता पे है।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलता काटा है, सिमरन करता है, पता नहीं कौन है।

मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल कौन दवाई दे इस जान चल सोच जे माई नाल जाव तो फिर दर्शन नहीं हो अगे बड़ा तरस है पता नहीं और कितना तरसना पवेगा संगत इतों लंघदिया ने दर्शन कर जाने ने जो दर्शन करके आदि ने उन्होंने खुशी

कितना समय बाकी है कि तू जानी, पर बाकी का समा अमृत छक के नित नेमे बन के बाकी का समा आप बताएगी। और अमृत कोई सजा नहीं है, ये रहमत है। कुछ लोग डर जाते हैं अमृत छकेंगे तो पता नहीं की करना पड़ेगा।

दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने। कहंदे नहीं दोस्ती करनी है

एक ओ सज्जन जिनू कच्चा सज्जन कहंदे, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़े पासे ले जाए, ओनू कहंदे ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है, ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छड़ गुरुद्वारे मंदिर की जाना, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त, पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे, ओनू आखे छड़ माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी, किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जिहड़ा मोड़े, ओ पक्का सज्जन, पक्का।

एक जोगी जिन्हें तपस्या कीती ते वर प्राप्त कीता, मैं जिन्हू चाहवां

जोगी कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया भाई तिलकू जी ने बुआ

एक इन्नी शक्ति दा मालक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगदा। जोगी आसन ला के बह गया। रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन, उन रिधियां सिद्धियां दे सदका

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनू वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुने भाई तिलकू जी उठे, उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तो कुर्बान हो जांदे ने। गुरु दा वास्ता पाया ते सिख किवें बैठा रहिंदा। बुआ खोले सामने भाई तिलकू।

जोगी जेड़ा सी कह लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा जेदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे मेरे गुरु मेरे नहीं ते सारिया दे सांझे ने उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहब है। जोगी कहन लगा ओ रहिंदे कित्थे ने भाई तिलकू जी कहन लगे ओ श्री अमृतसर रहिंदे। जोगी ने कहा तिलकू चल फिर मैनू अपने गुरु को ले चल। भाई तिलकू जी ने

सियाने कहंदे ने दोस्ती भी देख के पानी चाहिए। सोचना चाहिए जिदे नाल मैं दोस्ती करन लगा ए मेरी दोस्ती दे लायक है कि नहीं, किधरे ए ता नहीं आज जिदे नाल मैं दोस्ती करन लगा कल एदे कोल मैनू नुकसान उठाना पवे। इस वास्ते के है तित जाए बहु सत संगति जिथे हर का

फिर सौंगे हुण भालू देख रहा सी कि मेरे दोस्त नूं मक्खी तंग कर रही। हुण जदों दोबारा मक्खी आके मुंह ते बैठी ते भालू ने उसे तरह हाथ हिला दिता ते मक्खी उड़ गई। दोबारा फिर मक्खी आके बह गई। ये कुदरती गल है कि मक्खी नूं जिथों हटाओ उड़ के दोबारा फिर उथे आके बहिंदी। मक्खी दोबारा आके फिर उहदे मुंह ते बह गई। हुण भालू नूं गुस्सा चढ़िया, कहण लगा है मेरे यार नूं सौण नहीं दिंदी। हुण ओह अपनी जगह भला कर रहे है क्योंकि समझ नहीं पूरी कि मैं की करन लगा। भालू मन विच कहिंदा कि उहनां मक्खी नूं ही मार दे, घड़ी मुड़ी आके बहिंदी। मक्खी आके उस आदमी दे मुंह ते जदों बैठी उहने जोर दी पंजा मारिया ते मक्खी ते, पर मक्खी उड़ गई उहदे मुंह ते वज्जा ते मुंह दे दंद सारे बाहर निकल आए। मत्था भी सारा भज गया ते प्राण उड़ गए, खत्म हो गए। दोस्ती की थी पर ओ दोस्ती इहदी जान लैके बह गई। सियाणे कहंदे ने दोस्ती उत्थे करो जिथे निभा सको ते निभ सके। दोस्ती उहदे नाल करो जिहदे कोलों नुकसान ना उठाना पवे। ये ठीक है कि भला करो जरूर, पर जे भले की उम्मीद करनी ये भी मेरे नाल भला करे तो उत्थे भला करो जिथों भलाए।

बदली हो गई। जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफत इनिया वड़ियाईया ने, उस गुरु की उम्र किन्नी है? पाए दिल को कहन लगे, पिता का जन्म के जाने पूछ, दुनिया के हिसाब के नाल उन्हां दी उम्र

गुरु साहब जी कहते ने गुरु सतगुर बोहल हर नाम का वड पागी सिख गुण सांझ करावे तिना गुरसिखा को हों आ रहा जो बहन दिया उठ दिया हर नाम त्याग जिड़ा गुरु है ए नाम दा बोल है जेड़े सिख ने प्यारे ने ओ गुरु दे बोल दे कोल आके बहिंदे ने नाम दे बोल दे कोल ते गुरु दे गुणा दी विचार कर दे नाम दे नाल चोरियां पर दे उन्हां गुरसिखां तों कुर्बान

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए, मलाह नूं कहन लगे बचण दी कोई उम्मीद है तूफान।

जिन्हों गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड़ियाई दिती निहाल हो गए जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारिया दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नू तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा पाए तिलकू दरिया सी गुरमुख सी जोगी ने दोस्ती की थी जोगी तर गया इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण तुहाडा जन्म

ने अति सिस्ती सी फरीद नू। एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, ते जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

गया। बहुत धनाढ्य अचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत, लश्कर

0: बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: पापा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उस आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि ही मन में जल लग रहे हैं थोड़ी कोल से हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कहां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस कां उड़ के छपड़ी डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानी ले सो सिर कफल उतार जो सिर साई नानी ले सो सिर की देताए उन्हें बैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: और साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी सारे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए भैने मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा
5: मेरिया लोड़ा मेरिया लोड़ा तो खुदा पूरिया करता तो हो भी चाहिए कि की जो कुछ मुझे लोग दे जाते जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना दिन वेले बेड़ी चलाना तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थे दसो जाना मैं उगन हारा कोगन पल्ले नाही
4: तन
5: ते मैं नहीं पैना तन तो गुरु महाराज है जरा सब अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है और दर से जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

सन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं कि यह संसार एक दंगल है और इस दंगल दे विच पांच पहलवान खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कोई काम तो बचता है तो क्रोध दे वश हो जाता है, क्रोध तो बचता है तो लोभ दे वश हो जाता है, लोभ तो बचता है मोह दे वश हो जाता है, हंकार इस नू डेग लैंदा है। ये पांच पहलवानड़े ऐसे हैं जो हर एक नू डेग देंदे हैं। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि इना पंजा पहलवाना तो मैं किवें फतेह प्राप्त की थी। ओ है गुरु दी बख्शिश। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मेरी पिठ ते मेहर भरिया हाथ रख दिता। वात वजन टमक पेरियां, मल लथे लेंदे फेरियां, निहत्थे पंज जवान मैं गुर थापी दिती। कंड जी गुरु दी बख्शिश दा सदका मैं इना पंजा तो

सारे ही जीव अकाल पुरख वाहिगुरु ने इकट्ठे भेजे हैं। ए संसार एक बाजार है जिथे जीव वणज करन लई आए है, सौदा करन लई आए है। जिन्हां ने इथे आके सच दा वणज कीता, सेवा सिमरन परब कार कीता, ओ ता लाह खट के गए। ते जिन्हां ने इथे आके निरी माया दी ही खेड खेडी है, हजूर कहंदे हन ओ अपना मनुच्छा जन्म एवें व्यर्थ गवा के जान। क्योंकि संसार एक रंग भूमि है जिथे हर जीव आपो अपनिया खेडां विच रुझिया होया है। हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगत सगल जगत। दाई दाया कहंदे हन खिडाउन वाले नू, दिन अते रात इस मनुख नू खिडा रहे हैं और सारा जगत इस विच खेड रहा है। और जेड़ी जेड़ी भी कोई खेड खेड रहा है, अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक दी खेड नू बड़े गौ नाल तक रहा है, बड़े गौ नाल लिखिया जा रहा है। जिन्हां ने इथे आके नाम दी खेड खेडी, ओ ता निरंकार दे चरणां दे नेड़े हो गए, उदी प्रसन्नता दे प्राप्त हो गए। जिन्हां ने मेरी माया दी ही खेड खेडी है, ओ मालिक दी बख्शिश तो दूर हो गए। हजूर दा बचन है पवन गुरु, पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया वाचे, धर्म हदूर कर्मी आपो अपनी के नेरे के दूर। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हां ने इथे आके नाम दी घालना कीती, नाम दा वणज कीता, ओ लाह खट के जानगे। इसलिए हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है भई मरण दे बाद भी कोई जीवन है, गल मुक नहीं जांदी। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि साकत पुरशां दा पापियां पुरशां दा भी मरण दे बाद जीवन है, गुरमुखां दा सतपुरशां दा महापुरखां दा भी जीवन है। पापी दा जीवन कैसा है, हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है भई पापी साकत पुरुष जो है ओ पहला ता अपना मनुच्छा जन्म ही नरक बना लैंदा, ते जदों अपनी औधी समाप्त करके जांदा है उस लई कुंभी नरक फिर तैयार है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, तिन्ना मुख डरावने ए साकत पुरशां लई है। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्ना विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे थोर ना थाओ। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन माधानिया त्यो मथे धर्म रह। ए ता है साकत पुरशां दा जीवन। ते गुरमुखां दा जीवन कैसा है, भले पुरशां दा जीवन कैसा है, हजूर कहंदे हन के अंतर गुर आराधना। गुरमुख जन जो हन ओ मन करके भी जपदे हन और रचना द्वारा भी जपदे हन श्री वाहे गुरु, और नेत्रां द्वारा गुरु का दर्शन करदे हन, कन्ना द्वारा गुरु की बाणी श्रवण करदे हन। इसलिए ऐसे गुरमुख नू किथे निवास मिलदा है, हजूर ने मोहर लगा दी। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या, रत्या तो भाव है सतगुरां दे चरणा विच जो जुड़दे हन उन्हां नू किथे थां मिलदी है। सतगुर सेती रत्या दरगह पाईऐ थाऊ, दरगाह विच भी निरंकार उन्हां नू अपने चरणा विच वासा बख्शदा है। इसलिए जीव सारे ही आए हन, पर जो नाम दा वणज करके जानदे उन्हां दा मुख एथे भी उजला है ते दरगाह विच भी उजला होएगा। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है।

हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि जिनके पल्ले धन वसै तिन का नाम फकीर। फकीर तो भाव किसे संत महात्मा दा नाम नहीं, फकीर कहते हैं मंगते नू। मंगते नू कोई कितना भी दान कर देवे ओ मंगना नहीं छड़दा, फिर मंगता है। ते धन दा लोभी भी कृष्णालु पुरुष भी जितना भी तनी हो जावे ओ फिर मंगेगा, फिर हर एक दी खुशामद करेगा भाई किवें मैनू धन प्राप्त हो जावे। हजूर कहंदे हन कि ज्यों पावक ईंधन नहीं द्रापे, जिस तरह अग्नि दे विच लकड़ां पाई जाओ कदी ओ नहीं कहंदी भाई मैं रज गई हां, ऐसा ही तृष्णालु पुरुष दा जीवन है कि ओ हर एक दी खुशामद करदा है, कहंदा है मैनू किवें धन प्राप्त हो जावे। पर हे वाहिगुरु, जिन्हां दे हिरदे विच तेरा नाम वस गया ना, ओ गुणा दे खजाने हो गए। क्योंकि सच्चे साव ओ हन, सच्चे तनी ओ हन, जिन्हां ने एथे आके नाम दा वणज कीता, जपया श्री वाहिगुरु। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन, सच तन वणजो।

भाई शाह भाई गुरदास जी, आप कहिंदे हन कि इस संसार विच दो प्रकार दी संगत है। नाम दोहां दा संगत है, एक संगत प्रभु दे नाल मिलाप करा देंदी है, एक संगत नरकां दा अधिकारी बना देंदी है। और कुछ दृष्टांत दे के आप समझा रहे हैं। भाई साहब कहिंदे हन कि काहू दिशा के पवन गमन के बरखा है। एक हवा पवन ऐसी आउंदी है जो बदला नू ले आउंदी है, बदल बरसदे हन, जी जंत हरियावले हुंदे हन। एक हवा ऐसी आउंदी है जो बदल बरसन वाला हुंदा है, बदला नू उड़ा के ले जांदी है। एक हवा सुख रूप है, एक हवा दुख रूप है। इसे तरह आप दूसरा दृष्टांत दे रहे हन धरती दे जल दा। आप श्रवण करो।

ऐसा निर्मल जल होंदा रोगी शरीर नू अरोग कर देंदा। किसे धरती दा ऐसा कठोर जल होंदा अरोग शरीर नू नित दा रोगी बना देंदा। नाम दोहां दा ही जल है, एक जल सुख रूप है, एक जल दुख रूप है। भाई साहब तीसरा दृष्टांत दे रहे।

सुनिए सिख सही साहब जी कहंदे हन आ दुनिया दे लोको मेरी एक सच्ची सिख्या ले लो। आख्या महाराज केड़ी सिख्या ओ साहब जी कहंदे हन जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो जे चंगे कर्म कर रहे हो ओ भी तुहाडे दिखे जा रहे जे मंदे करोगे ओ भी दिखे जा रहे।

प्रीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवार अजनु समझ लच दिखयो ना हनी अजहू सम